0: And after that beauty, I think it's time for a little more madness that I found on an EP called Baba Edits, Volume 1.
1: पहला ही अक्षर के मतलब है दिल लागल दिल लागल दिल लागल दूसरा का मतलब इश्क हुआ तीसरा